वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड बिहान

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: हामी जन्मजात नै शिकारी हुँ शिकारी पुरै दैलेख मलाई चाहियो
2: बीएफएक्स सिनेमाज कुराही दश नारायणपुर सौरीकुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटो को डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी

0: प्रोडक्ट कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस अडगुरी।

राम राम मैगर कविलाहुक हार्दिक स्वागत बाद थारू भाषा के कार्यक्रम अपना का आवाजमा पक्कफे मई बाटू अपना माझ में उपस्थित हो साइकल बाटू शालिक राम चौधरी पक्कफे आसपे हमारा उपस्थित हो साइकल बाटी हमारा अपना का आवाज लेकन यह समय में बिहार का दिन हमारा दुई बजे का मध्य पश्चिम हाईलाइट पास करीब करीब हमारा तीन बजे समय रहना करती वह अनुरूप आसपे उपस्थित हो साइकल बाटी पक्कफे अपना का आवाज अपना को कार्यक्रम हो अपन प्रतिभा सुनिना कार्यक्रम हो अपना को गीत गजल कविता जैसुकी प्रतिभावा ज्यास रेडियो में सुनिना लायक अपन प्रतिभा अपनाऊ क्र सुनाई सीक्ने बाटी अगर कलाक अपनाऊ क्र 082-588-54 नंबर डायल कर आई पर्ना हो अपनाऊ क्र ई नंबर डायल कर आईबी कला से पक्कफे अपन प्रतिभा सुनाई सीक्ने बाटी रमाइलो गपगाफी होने बा मैगर के बिल्हा अपनाऊ क्र रेडियो मध्य पश्चिम इंटरनेट के पहुंच बाटी कला से www.radioMP.org लगइन कई कना सुन फे सीक्ने बाटी उसका हम पात्रो मोबाइल एप्लीकेशन में से फे अपनाऊ क्र रेडियो मध्य पश्चिम सुन सीक्ने बाटी हमारा अपना का आवाज रेडियो मध्य पश्चिम के फेसबुक में से फिर हमारा लाइव करल बाटी अपना उग्र रेडियो मध्य पश्चिम नेपाली में टाइप कर बिकल से पक्की वहां से अपना उग्र भेटिने बाटी सुन सीक्ने बाटी वहां से फिर ध्यूर माध्यम बा अपना उग्र जहां से सहज उठा वहां से अपना उग्र सुनकर साथ दिविकना आशा फिलियल बाटी ई कार्यक्रम में आकर अपन प्रतिभा सुनईना कार्यक्रम हो अपना उग्र अपन प्रतिभा धर सीक्ने बाटी हमारा अपना उन को प्रतिभा कदर करती दांसी पुरस्कार के व्यवस्थापित कैदे रखी अपना उग्र प्राप्त करने बाटी स्वर्गद्वारी वाटर सप्लायर्स के तर्फ से जहां जीवन चौधरी वहां प्रतिनिधि हुई वहां का तर्फ से अपना उग्र एक कार्टून पानी की व्यवस्था कैदे रखला उसका 100 रूपये के रिचार्ज कार्ड फिर अपना उग्र प्राप्त करने बाटी अपना उग्र 082-588-54 डायल करती करी अपना माज में फोन के प्रतीक्षा में एक ठो सुगर गीतर छाटू अपना उग्र डायल करती करी 082-588-54

0: मैहरूको बिलाहुङ्क कार्यक्रम अपनाको आवाजकै समय शुरू हो स्याकल्दा हाम्रो कार्यक्रमको शुभारम्भ सुग्घर गीत धेरैले पक्कै मन परलु रमाइलो गीत रह फेरसे स्वागत गर्न चाहन्छु अत्र बेला किसँग हाम्रो सम्पर्कमा स्याकल्दाबाट उहाँ स्वागत गर्दारी हेलो राम राम
1: राम राम
0: राम राम कहाँ से के बोल्ले
1: खुशीराम
0: चौधरी ना बा हाल खबर खुशी राम के
1: हाल खबर मजा बातु मजा बाती
0: होना ये गर्मी बहुत बना
1: भत्नी घाम ना हेलो घाम तो रहा नहीं कितना हो
0: क्या करती बैठी है की
1: अच्छी ताम सिंह बैठल बातु घाम बा बैठल बातु ताम सिंह ताम धंधा नहीं हो
0: होना आज क्या सुने थे आज
1: एक तो सुना सुना आज से
0: ला शुरू करी

0: जाए अरे भरी गीला नदी नाला जमुनाला हेरा कैसा जाए अरे लागी गईला सावना सावनिया रे लडिया भर पानी लहरा से लिए तैयारी गुरिया माना जाए बू लहरा से कैया लिए गुरिया माना जाए बू बाबा मोरा पुरखा पुरनिया रे भयावा मोरा छोटी दादू मोरा जलमा रही आली हरे के आई अरे दादू मोरा जलमा रही आली हरे के आई उर्दा घटी मौरंग टिकले काट खतौते उर्दा घटी मौरंग टिकले सूप चटनी बच्चा मार लेना
1: ला सुगर सजना गीत गाजेली आफ्नो लागि हृदय धन्यवाद ऐना दिनमा फेस्टको सहभागिता जनिति गर्बी एकजी पाछ हाम्रो एक सुगर गीत बजिने बाटी के सम्झ चाहते
0: महिना सबसे प्रथम त समझातु अपने हूँ कहीन रेडियो मध्य पश्चिम के पूरी संपूर्ण परिवार लगाए मैं खुशी राम सिन्हा सबको मन समझती विदा हुई थी
1: राम राम वहाँ खुशी राम चौधरी झिंगौरा से समझल रह सुगर सजना गीत गाकर गई आप अपने पाला शून्य 82 5 60 8 54 नंबर डायल करके आई सीक्ने बाटी हम प्रत्येक बिहार का दिन ऐना करते हम 2 बजे का मध्य पश्चिम हाईलाइट्स पास करीब करीब हम 3 बजे रहना करते अपना को प्रतिभा सुनिना कार्यक्रम हो आई सीक्ने बाटी 082 5 60 8 54 नंबर डायल कईकन हम अपना खोकला कईकन छिटमिट पुरस्कार पे व्यवस्था कर अपना जीवन चौधरी के तरफ से एक कार्टून पानी प्राप्त करने बाटे ईन गर्मी के समय में जूर जूर पानी प्राप्त करने बाटे उस तरह का शहरी प्रक्रिया प्राप्त करने बाटे अत्र बेला कि संग हम संपर्क में सैकल बाज स्वागत करदा हेलो राम राम राम राम कहाँ से की बोल रही
0: गांव बेसी हजर
1: कहर पर्छ ये गांव बेसी का ना
0: ये फुर्से खाली
1: ना
0: हजर
1: कहाँ से की बोल अपने नाम
0: शेर बहादुर चौधरी हजर
1: पहिला फेरा फोन कर लेना यही अगाडि सुने कि नहीं कार्यक्रम
0: सुनो
1: ना आज फोन लगिली लाग गेल ना ठीक बा कार्यक्रम में समझल बाटी खुशी लागल आज का सुनाइटी आज सुरु करी
0: गजरी मा बोल राम जरा मैया जान से तरुआ मोर बातारी खेते रैया मोराना के तरुआ मोर बातारी खेते
1: कार्यक्रम सम्झली सुगर सजना फे गादीली आफ्नो लागि हृदय धन्यवाद बा कार्यक्रम फे सुन्ती रवि अस्तको मैया करदेवी ऐना दिन फे अस्तको सम्झौती गर्बी हाम्रो 1 बजे पास एक सुगर गीत बजिने बाटी के सम्झ चाहती आफ्नो सँग साथी न सम्झ सेठी
0: सबसे पहले तो अपना
1: धन्यवाद
0: महिला चिन्ता मरीन
1: ल छुट्टी राम राम उहाँ लचेत बहादुर चौधरी फुर्सेखाली गाउँ बेसिकन गाउँमा सम्झल र लगाउँ पहिलो फेरामा सुन्टीबाट गाउँ बेसिकन फे गाउँ रहेछ आइसक्ने बाटी 082-5608-54 नम्बर डायल गरेको आइसक्ने बाटी पकफे अत्र बेला एक ठाउँ सुगर गीत बजाई चाहटे गीत पास आफ्नो माझ उपस्थित हुने बाटी आफ्नो 082-5608-54 नम्बर डायल गर्दै गर्बी

0: मैगर कविलाहक फेरस स्वागत द कार्यक्रम थारू भाषा के कार्यक्रम अपना का आवाज में हम सुगर सुगर गीत राज फे हमारे यहाँ से बजीती बाटी पक्क फे मनोरंजन राहरंग गीत करती बाटी कना हमार पूर्ण विश्वास फिर हल्ला कि संग्रह हमारे अब तला संग्रह न्यू रोट पक्क फे हमारा रेडियो मध्य पश्चिम में से प्रसारित कार्यक्रम एक ठोकल कार्यक्रम हो थारू भाषा के कार्यक्रम अपना का आवाज हम पक्क फे दांग क्षेत्र में कह थारू के बाहुल्यता फिर एकदम धीर भाग पर फे आप हमारा विशेष करके थारू समुदाय में दानसेहुल फिर चैनार कर थारू भाषा के गीत हम बजाकन अपना हुनकला दानसेहुल फिर हारंगित कर हमार प्रयास फेरल उसक हमार थारू भाषा के विभिन्न विषय वस्तु बनाकर अपन रचना फिर अपन प्रस्तुत कर सीठी अपना उक्र शून्य बयासी पांच साठी आठ सौ चौन नंबर डायल कईकन अपना उक्र जुनसुक क्षेत्र में अथवा जुनसुक भाषा में जुनसुक विषय वस्तु में रकन अपना अपन रचना कर सीठी अपन ये सृजनात्मक चीज कफी हमारा विकास प्रति जाय प्रथा हमार संस्कार के बारे में अथवा उजागर कर प्रथा अथवा बेला के संग्रह हमार संपर्क में आशकल बाट वहां स्वागत कर दारी हेलो राम राम
1: हेलो राम राम सर
0: राम राम कहाँ से क्या बोले
1: खोराई तीन बेलवा से मैं समझना चौधरी
0: खोराई तीन बेलवा से समझना चौधरी ना
1: हजुर सर
0: कार्यक्रम सुनती बाटी
1: हजुर हाँ रेडियो में सुनती बाटी
0: पसिन अब घाम हम गया तो बाहर निकल ना फिर मिल ना
1: हजुर बजार आके गति घर बाटू रेडियो सुन तू पर सर
0: ठीक बा कार्यक्रम समझ ठी खुशी लागत आज का सुने थे
1: आज एक ठो सजना सुनाऊ की कर तू आज सजना गई ना दिन होते आज साथी मित्र फिर सजना सुना रख ल सुनी ना था
0: सब कुछ जाना सजना
1: सुने तक वो फिर सुनम कर तू अपन अपन रहत रहना था
0: शुरू करे
1: हुई था सर भंगर गादा पार फैलर खेल जे ऐठो हसिन छैल मना नहीं परत खेल रे जीनी आई असिन छैल मना नहीं परत खेल रे जीनी आई हो नाट फैला बसिया बजैती रे नाट रे छैला सिठी जे मरटो असिन छैला मना नहीं परत खेल

0: हो असिन छैले मना नाही परल खेल रे जीनी आई हो अठारह हो सर
1: अठारह हो ना
0: हजुर
1: सुगर सजना सुना दिली अपना कला ढूर दूर धन्यवाद बा ऐना दिन व्यस्त का समझौती कर बिगा हो
0: हजुर सर
1: की समझौती है कि
0: हजुर सर प्रथम तो अपनी ना
1: धन्यवाद
0: वो पराजित मत विकलक सर ना वो हमारे भैया संतोष चौधरी बाबू सरिता चौधरी वो बाबू संगीता चौधरी वो ये रेडियो सुन के बैठलक सबको छोटा हम कहीं महीना चिन्ह नी चिन्ह सबको छोटा हम कहीं समझौ राम राम सर
1: राम राम उहाँहरूले सम्झना चौधरी गोराइतिन बेलुवासे सम्झल रही आप अपने पाला सुने 82 560 854 नम्बर डायल कैकन आई सिक्ने भाथे अत्र बेला मैं प्राविधिक रूप में सात दीदीबाट शान्त कुमार गुडामगर आई सिक्ने भाथे 82 560 854 नम्बर डायल कैकन पक्का फिर हम प्रत्येक बिहार का दिन ईनाकृति 2 बजे पंते पश्चिम हाईलाइट्स में हम ये साप्ताहिक कार्यक्रम हो अपना नान्सी पुरस्कार के व्यवस्थापक तर्फी अपना प्राप्त करने बाटे जीवन चौधरी के तर्फ से एक कार्टुन पानी प्राप्त करने बाटे उसका 100 रुपये रिचार्ज कार्ड प्राप्त करने बाटे अपना क्र फोन डायल कर आईसने बाटे फिर अत्र बेला संग्रह की नीलो हिटक हूं अत्र बेला एक सुगर गीत हम धरसाटी स्वीकारी

0: 부산에 오신 노동이 순하리 투 저기로 사실로 살나 가가지고
1: 나 수르가리
0: 졸리야 바라라 또라자우나레 할라리 할라리 이와리 달라 가오키 차엘와 켈리야 기우나이 이와리 달라 가오키 차엘와 기우나이 크르다 까나까나 जी एड्रेस में का लास्ट लास्ट सुविधा जाऊँ समय से
1: ना
0: और जाने साला दियो
1: अल्लाह हुई था सुगर सजना गाड़ी लिया अपनों के लिए धरने बाद बा अपन संग साथी ना समझो सिर्फ ठीक
0: संग साथी तो आप जो लोग बाबू होंगे सक्या होंगे इन समझे तू दोस्त तीन बुरक दाजी होंगे होंगे इन समझे तू बिना तक मैं से बुरे लगा तू बावन वर्ष को बिला दादू बहन ना होने के तो कहाँ पर ये ठोसाई ना लेके नहीं सब क्रेन जो सब ने होकर ना भाली स्टाफ सब कुल जानी ना अपने क्रेन सबको जान समझती कि गाड़ी माँ आपन जान के एक ख्याल रख भी पंच साइकिल छुलो नहीं हो जान से छुलो हो पंच अगला काम काम काम नहीं कर भी कैसे वो जानकारी करी थी कि गाड़ी लग बहुत बाल कैसे सब ने जानकारी करी थी मैं वीरा डेट ना
1: राम राम
0: जी
1: वहाँ रहा चित्र चौधरी कर जाए समझल रहता सुगर सजना गाती गई आप जान से हम कार्यक्रम के पुछार पुछार हो आ रही क्यों सुंगर यहाँ कल से एकजन लग हमारा समावेश करने बैठी हमारा बातचीत करने बैठी अत्र बेला क्यों सुंगर यहाँ हमारा संपर्क में आजकल बाट स्वागत कर दारी हेलो राम राम हेलो राम राम क्यों सुंगर यहाँ हमारा संपर्क में इन प्रयास बाट आई सकने बैठी शून्य 82568854 नंबर डायल करके आई सकने बैठी राम राम राम राम क्यू संग संपर्क महीना प्रयास में रहा अब हम कार्यक्रम के पुछार पुछार हो आशा कल बाटे हुईठा अत्र बेलासम अपना कार्यक्रम सुन का साथ दी हम विदा मांग पर्ना हुईठा अब हम आसमरा खुशीराम चौधरी जिंगो राशे समझल रह उसनग चेत बहादुर चौधरी गांव बेसी फुर्से खाली से समझल रह उसनग बेलवा से समझल रही समझना चौधरी उसनग छित्रु चौधरी करजाई से समझल रह सबकुजना आज चाहिँ सजना गएको गेल सबको जानकै मजा रहेन तर पाला से एक जन विजेता बनाई फर्ना बिठा आज हाम्रो सम्झना चौधरी बेलवासे सम्झल रही सुगर सजना फेकादीले उहाँ विजेता कराइती आफ्नो प्राप्त प्राप्त कोइरखली आफ्नो जीवन चौधरीकै तर्फ से एक कार्टुन पानी उसको 100 रुपये रिचार्ज कार्ड प्राप्त कईरखली अपना एक हफ्ता भीतर रेडियो मध्य पश्चिम संपर्क करबी हुईठा तब हम विदा होकर जाई पर्ना हुईठा अत्र बेलासम फोन लगीली फोन लगीना प्रयास करली उसको सुन को साथ दिली सब कुमेगर को पिनाउकला ढूर ढूर धन्यवाद अत्र बेलासम प्राविधिक रूप में साथ दिल शांत कुमार बुढ़ा में करना फिर धन्यवाद दी मैं शारिक राम चौधरी विदाई टू राम राम।

राम राम संजेक पांच बजे थारू भाषक मध्य पश्चिम खबर में शारिक राम चौधरी का हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश का मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य से बढ़्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण का विशेष योजना बनाकर प्रभावकारी कार्यान्वयन करपर्ना भटवारख ल। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय ट्राफिक व्यवस्थापन समीक्षा गोष्ठी 2083 काज बुटोल में उद्घाटन करते मुख्यमंत्री आचार्य से विशेष करीकन मानवीय त्रुटि लापरवाही और ट्राफिक नियम को पालना निकलबेर दुर्घटना बहर तिरलक उल्लेख करते दुर्घटना न्यूनीकरण का विशेष योजना निर्माण करीकन कार्यान्वयन करपर्ना बटुल हुईट। वहां से सड़क सुरक्षा और सुरक्षित प्रदेश सरकार का प्राथमिकता में धर्किलक उल्लेख करते दुर्घटना न्यूनीकरण का जनचेतना अभिवृद्धि ट्राफिक व्यवस्थापन में सुधार सड़क पूर्वाधार का स्तरोन्नति तथा संबंधित निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रलक बटवा रख। मुख्यमंत्री आचार्य से सड़क दुर्घटना से भारी मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुगिना हुईलक से एकर रोकथाम कला दीर्घकालीन ओ परिणाममुखी कार्यक्रम संचालन कर पर्ना में जोर दे रख। वहां से सुरक्षित सड़क और सुरक्षित यात्रा का वातावरण निर्माण कर सक्कू पक्ष के साझा प्रयास आवश्यक रलक उल्लेख कर रख। रूपन्देही स्थित बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ का सभाहाल में आयोजित गोष्ठी में प्रदेश प्रहरी कार्यालय ट्राफिक प्रहरी स्थानीय तह का प्रतिनिधि तथा सरकारवाला निकाय का पदाधिकारी सहभागिता रहलबा। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय का प्रहरी नायब महानिरीक्षक भूपेन्द्र बहादुर खत्री का अध्यक्षता तथा मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य का बरपौना में हुई कार्यक्रम में ट्राफिक व्यवस्थापन सड़क सुरक्षा और दुर्घटना न्यूनीकरण का उपाय बारे समीक्षा तथा छलफल करगिल रह। गृहमंत्री सुदन गुरूंग से मनसून जन्ने विपद व्यवस्थापन हन सरकार से उच्च प्राथमिकता में धैकन तैयारी करती रलक बतवा रख। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का बैठक पास संचारकर्मी से बाट करती वहां से बाढ़ी पहिरो लगायत का विपद में नागरिक सुरक्षा कला हेलीकप्टर सहित सुरक्षा निकाय सबको स्रोत साधन परिचालन करना तैयारी करलक बतवा रख। गृहमंत्री गुरूंग से औपचारिक निरीक्षण सेफे नागरिक प्रत्यक्ष सुरक्षा व उद्धारण केन्द्र धैकन काम करना बटवा रख। विपद व्यवस्थापन आघ का सरकार का सकारात्मक काम हन निरंतरता देती कमजोरी सुधार कईकन अघाड़ी बहरना उहां का काहिरलहीन। मनसून का ब्याला राजमार्ग में हुईना सड़क अवरूद्ध हटैकला गृह मंत्रालय से भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय से समन्वय करती रलक गृहमंत्री गुरूंग जानकारी दे रख। सड़क खुलाइकला आवश्यक डोजर तथा उपकरण कहाँ बाटकना जानकारी देना विशेष डिजिटल एप विकास करगिलक उहां बतवा रख। यी प्रणाली मार्फत सड़क अवरोध हुईल से लघु उपकरण तत्काल परिचालन कईकन सड़क खोलिना ओ यात्रु कनकला अलपत्र पर्ना अवस्था को अंत्य होना वहां विश्वास व्यक्त कर। भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्न ऐलक व्यक्ति संस्था तथा निकाय हन कानून अनुसार लीजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गरब भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसे आग्रह गरिराखल। विभागसे देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालय हन पत्राचार कैकन भोगाधिकारमा रलक सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान कैकन सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्था हन लीजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराई निर्देशन देलक हो। विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लीजमा उपलब्ध गरिन सम्बन्धी कार्यनीति 2071 अनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति संस्था और निकाय से तोगिलक अवधि भीतर लीजमा रूपान्तरण कला का निवेदन दिए पर्ना व्यवस्था बा। विभाग से भोगाधिकार समाप्त हुईल से वा म्याद ओरई लगलग जग्गा का विवरण अध्यावधि कईकन संबंधित पक्ष न जानकारी करीला ओ लीजमा रूपान्तरण करला आवश्यक प्रक्रिया अघाड़ी बढ़ाई सबको कार्यालय न निर्देशन दे राखल। वस्तक असीन जग्गा का अभिलेख व्यवस्थित धरकला कानूनी अन्य हटकला ओ सरकारी संपत्ति का उपयोग न थप व्यवस्थित बनाएकला विशेष ध्यान दिए कगिलवा। लुम्बिनी प्रदेश में चालू आर्थिक वर्ष का पहिलो 11 महीना में आंतरिक राजस्व संकलन में सुधार देखिल्बा। प्रदेश सरकार से गत जेठ 25 गते सम्म 5,14,04,00,000 आंतरिक राजस्व संकलन कर रहलबा। यह रकम गत आर्थिक वर्ष को उह अवधि में तुलना में 12% बढ़ी हो। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री धनेन्द्र कार्केसले प्रदेश सभा में प्रस्तुत करलक आर्थिक विवरण अनुसार उह अवधि भीतर प्रदेश संचित कोष में 26,57,77,00,000 दाखिला हो रहा। संघीय सरकार से प्राप्त अनुदान राजस्व बाँडफाड़ और प्रदेश का आंतरिक स्रोत से प्राप्त रकम
यी कोषमा समावेश हुने व्यवस्था रहल्बा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष हालसम्म रु 17,47,82,00,000 खर्च गर्न योजना राखल। यी कुल विनियोजित बजेटका 44.85% हो। उक्त खर्च मध्ये रु 10,11,09,00,000 पूँजीगत तथा 7,36,73,00,000 चालू तर्फ अलग मन्त्रालय जना राखल। प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीय तह र वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रु 1,93,23,00,000 उपलब्ध करिलक मध्ये 56.42% खर्च हो स्याकल्बा। प्रदेश गौरवका योजना हनरको रूपमा रलक प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणका काम सम्पन्न हो रहल। उक्त योजनाका भौतिक प्रगति 7% तथा वित्तीय प्रगति 95.58% पुगल्बा। निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवन से गत वैशाख 21 गते से सेवा सञ्चालन हुइति रहल्बा। ओ मध्य प्रदेशमा पाछक 5 वर्षमा 21,000 से धेर सड़क दुर्घटना हुइबेर 2,748 जनाको मृत्यु हुइलक तथ्याङ्क सार्वजनिक रहल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 से 2081-82 सम्मका तथ्याङ्क अनुसार कुल 21,989 सड़क दुर्घटनामा 42,637 सवारी साधन रहलबाट दुर्घटनामा 2,748 जनाको मृत्यु हुलक तथ्याङ्कमा उल्लेख भए। उस्ताङ्क दुर्घटनामा पर्कन 10,866 जना गम्भीर घाइते ओ 36,442 जना सामान्य घाइते होरल। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ओम अधिकारीको मधेसमा जनसंख्या भारी प्रदेश हुलक वर्षे ओ सवारी साधन फे धुर हुलक वर्षे दुर्घटना रुवाक चुनौतीपूर्ण हुलक बटवा राख्ल। ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबको क्षेत्रको समन्वय गरिकन सचेतनामूलक कार्यक्रमको न्यूनीकरण गर सेक्जिना उहाँका काही बाटिन। नीति निर्माणमा फेरि ट्राफिक प्रहरी आवाज निपुगलक ओ बजेटमा कमजोर रलक होसे यीमा राज्यले विचार गर पर्ना उहाँका काहीर रहिन्। हुइठा आज थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन्जा फे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटे अखसा खबर मैसे समाचार कक्षको सङ्गरियनसँग मै शालिक राम चौधरी विदाहीटु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

वाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ।